0: जल रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी ओवे चल लग रहे हैं थोड़ी कोल तो हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता होए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कहां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी ते दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोना।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वाल ले जाएंगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिल तांगे।
4: कितनी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी ले सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानी ले सो सिर की देताए उन्नी पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
1: और साहब जी की गल है पहला तुसी नहीं गया रिता।
4: असी असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
1: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
1: और चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां दी सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
1: मेरिया लोड़ां। मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैं चाहिए नहीं की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राती लंगर चो ढेड़ भर के बाहर थड़े दसा जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नहीं।
4: तन हो तुसी।
1: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माणा में माणे तू तने तेरा परवासा

तो तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

तेरा खेल अखाड़ा जियो।

क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास सबके चौकीता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस दीदी वड्याई ता तेरी वड्याई।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल मालक आला दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

साध की महिमा वेद न जाने, साध की महिमा वेद न जाने, जितना सुने

तो सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने।

क्रोध नाल प्यार करते। हजूर फरमाते झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसी नाल त्रोह करना इनू मिठे लगते ने। हजूर कहते ने ऐ वाहगुरु इन्हों रख लै इन्हों औगणा तो।

आओ भाई बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी करा अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूर

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं कामी कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हार

अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते ओ तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगहें परवान।

गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी दा बोलिया होया सदा ही प्रवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन जाता है, दास दी लाज

अजय सरों में पीखे खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मतला

जदों तक होमे है अहंकार है तां परमेश्वर दे नाम दा कदे निवास नहीं हो सकदा। नाम टिकेगा जिथे निम्रता है, जिथे आपा परमेश्वर प्रेम हो गया है फिर नाम टिकेगा। जिथे अहंकार है होमे नामे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए, इसलिए जब हम होते

बाबा नामदेव जी नाम जपद्या जपद्या ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त होई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा।

होतना बरनबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई मानस जन्म अमोल पायो वृथा काहे गवाओ गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई इस देह को सिमरे देव सदे ये पाजू हर किसे

जब लगो बिकल पाई नहीं पानी पज लहरे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाए ए तेरी अवसर ए तेरी बार

ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत

मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मतन होए चलंब जे सतगुर पाया चले जन सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै चले जन्म सवार चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी चलिया।

पतंगा, कई जन पैकेट पतंगा, कई जनम गाजर मीन कुरंगा, कई जनम पंखे सर्प होयो,

అను సమజ కచ్ బిగడే ఉన్నాయిన పడలే రామ మురారు అను సమజ.

मनते पो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेत तुम्हारी एक टेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।

आप अपनी बाणी विच लिखते हैं कि साच कहो सुनते हो सब आ दुनिया दे लोगो एक वास्ते नहीं ये उपदेश सारे संसार ये सांझा और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं साच कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन ले।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर दा नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दित्तियां। चौथे प्रमाण विच भाई गुरदास जी कहते हैं,

प्रसन्न होए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल आया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरां इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू धन नहीं चाहिदा। सहदिया की चाहिदी? आख्या पछाण लै मेरी सूरत नूं गरीब निवाज, अज मैं तेनू पार कीता है बेड़ी तो बिठा के, अज मैं तेनू इस नदी तो बेड़ी ते बिठा के पार कीता है। एक दिन मैं भी तेरे पतन आना है। मैं तेनू इस सागर तो पार कीता है, तू मैनू पाओ सागर तो पार कर दे। सत सगत बोलो श्री। मेरा लेखा ना पूछी, मेरे जन्मा जन्मांतरा दे लेखे फाड़ के मैनू इस संसार सागर तो पार कर दे। सत सगत बोलो श्री। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने सहदे नूं हिरदे नाल लाया, आख्या सहदिया तेनू ही नहीं बख्शिया, तेरी इक्की कुल्लां बख्शिया। प्यार दे सदके धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन भी पाए, जन्म मरण निवार दिता सतगुरां ने पाई सहदे दा। किस दी खातर? प्रेम दी खातर, प्यार दी खातर। कोई गुरु दे चरणां नाल प्यार पा के तां वेखे, साच कहो

रखियो ग्रे पीतर उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

समारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निम निम लागा तेरी पाई।

वर्ण आश्रम करके लोग आपस विच खै खै मर रहे हैं। नाम तो विहूढ़े नरकां दे वासी बन गए।

मैं सारे संसार में जाके वरतावा और संसार दे लोग तेरा नाम जप के तेरे विच अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नू करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश किया, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नू खाओ खर्चो ये वधदा जांदा है। गुरबाणी का खजाना, नाम का खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे तो

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना इस वास्ते इन्हां दी आत्मावां नूं तसीहे दित्ते जा रहे। तां राजे जनक ने उत्थे एक घड़ी बह के सत्संग कीता और नरकां दे जीआं नूं मुक्त कराया। ताई आख्या तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। एक घड़ी दे सिमरन दे नाल जो राजे जनक ने मन करके उत्थे कीता प्रभु दे चरणां नाल जुड़ के आख्या नरकां दे नरक खाली हो गए उस जपन वाले दी सदके। क्योंकि जिस वेले नाम नूं एक पलड़े विच रखिया धर्मराज ने सत्संग दी एक कड़ी नूं एक पलड़े विच रखिया ते नरकां दे पापियां दे पापां नूं दूजे पलड़े विच ते नाम दे तुल ओ पाप ना तुल सके। सात संगत बोलो श्री साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। आख्या साईं दा नाम एटा अमोल है दी कोई कीमत नहीं पा सकता इसनों कोई तोल नहीं सकता। ता ओ राजे जनक दे दरबार विच जिस वेले गुरु नानक दे गुणवान हो रहे सन ते एक रिखी ने आख्या गुरु नानक कलयुग विच आएगा ते क्या राजा जनक जी असी गुरु नानक दे दर्शन कर सकांगे। आख्या क्यों नहीं तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हैं ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब देंदे हैं। जदों कलयुग आवेगा कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा ते रिखी ने आखिया मैनू मैं गुरु नानक नू किवें लब्बांगा। ता राजा जनक कहन लगा तेनू गुरु नानक लभण दी लोड़ नहीं गुरु नानक आपे ही तेनू लभ लेगा। सात संगत बोलो श्री ते जदों फिर समा बदलिया कलयुग दा समा आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज ते जिस वेले संतोख सर जिथे अज पवित्र अमृतसर दी धरती ते संतोख सर दा सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नूं टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओह कई उस मठ नूं जाके लगी ते सिखां ने आके बेनती कीती गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा है उहदे विच कोई रिखी है। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे हाँ एक रिखी है जो राजे जनक दे समें तों साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नूं एक एक इट अपनी हाथ नाल हटाई किते रिखी नूं लग ना जा ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उहदा सिर रखिया मुख ते छट्टे देते जल दे सिर ते हाथ रखिया ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है। तां गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कलयुग है कलयुग कमिया। रिखी कहण लगा मैनू कलयुग दी तत्ती वाह ना लगे मैनू बचा लो ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कलयुग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां उस निरंकार दे दर्शन करां ते फिर कहण लगा रिखी के कलयुग विच गुरु नानक ने आउणा सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो स्वास तले उतरे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के स्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने हैं। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहण लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। सात संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहण लगा सचमुच
गुरु अर्जन देव ही हरी दा रूप है। ता फिर उस रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरणों में विश्वास छड़ दिते ते फिर जूनिया तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जो भी गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा प्यारी सात संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना दे फिर 84 लाख त्रिगट जूना विच ना आवेगा। ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम आओ प्यार नाल जपिए।

मालिक के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नूं भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा, रब तू भी किठा से और बड़ा खतरनाक चल रहा।

आप कहते हैं धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, तेरे समान संसार विच होर कोई

मेरी चोली किसे ने नहीं पड़ी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

बेग्रह पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिलरा राह गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलां दा हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक।

क्योंकि तेरे जैसा संसार पे और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है और तू शूरवीर भी है। भगत एडा है कि जब आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल, जाद्या जाद्या जो अमृत वेला होया तो साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हैं कीर्तन नहीं सुनी, वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा की वार का समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ, सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां कितने दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अधे कीर्तन विच बह जाओ, ते अधे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे, सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख के चरणों में शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख के चरणों के नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ये सौदा सस्ता किया। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या, दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं, आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर देता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री। आख्या और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं,
उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दी चमकौर दी कच्ची गड़ी नू घेरा पा के खलारिया ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए के हिंद दा पीर जा रहा जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनू रोक के दसो साध सगत बोलो श्री अनेका ही नू साहब जी दी तलवार त्या शो प्राप्त होई दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगां लंघ गए दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकदा तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा दानी कोई नहीं धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं साथ सगत बोलो श्री इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे हन मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है मिला तुझसा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है साथ सगत बोलो श्री इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे होया भाई साहब भाई नंद लाल जी की कहंदे हन।